0: आज ही कॉल करो लुमिया ऑफिसेज इन वॉन डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी उर्दू अते हिंदी बोल देने और जानकारी ले ईमेल करो punjabi@lumia.io punjabi@lumia.io 289-982-9597 289-982-9597
1: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा

0: email bridgemohan. Contact us at bridgemohan.com.
1: सेंट्रल मिसिसागा दे रहण वाले हो ए मौका ना गवाओ बैलीमोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने सीमित समय ले एचएसटी दे विच खास बचत दा फायदा लो हाईवे 401 407 अते 410 गो ट्रांजिट शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटा दी दूरी ते सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ अज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com BALLYMORE homes.com

ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो ऐसे करियर के ड्रीम्स नु दिखाने के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड, यूनिट 2, ब्रैम्पटन, ओंटारियो। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लैके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच ते डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते। एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड, साउथ ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड, साउथ ब्रैम्पटन, या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते।

0: Center Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600. Hello, bro. ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ?
1: ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਿਮ ਹੌਟਨਸ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ।
0: ਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ 올ਡ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਲਾਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੂਥਸ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਐਂਬੀਅੰਸ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
1: ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ।
0: ਨਜ਼ਾਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, 30 ਰੈਂਬਲਰ ਡਰਾਈਵ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਮੇਜਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਸਟੀਲਸ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 9054512600। 9054512600।
2: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है। ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो आनू डेट नू प्रॉपरली असेस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200।
3: अपना ट्रक वेचने लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000।
4: ड्राइव कर रहे हो? शो नो एंजॉय कर रहे हो? कुछ भूल रहे हो?
5: ड्राइविंग लाइसेंस?
4: नो।
5: पुलिस ऑफिसर?
4: नो नो।
5: ट्रैफिक लाइसेंस?
4: नो।
5: देन
6: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर लई। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
8: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
9: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
10: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
11: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 B23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $99 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-765-2340 647-765-2340।
3: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

वाह जी वाह, बड़ी ही खूबसूरत है कवाली है। इस कर्म का करूं शुक्र कैसे अदा। सो मैनू तो लगता है कि फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम ही लगाई और सुनी भी पहली बार ही है। कई बार कई मकबूल कवालियां होर होंदियां ते आपां ज्यादातर उन्होंने ही बार बार लाने ना, पर बड़े ही प्यारे बोल है ते कमाल ही है। और किसी ने बड़ा वधिया जिहड़ा कमेंट भी किया है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। वाह जी वाह।

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 905-456-9900
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
2: Punjabi Versa!

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादिया नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणा तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 and 10।
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
4: आज
5: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए। जी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
5: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा।
7: दोस्तों मैं रविंदर बडाली ते मैं आ रहे जी 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर दे विच तुहाडे अपने शहर तुहाडी डिमांड दे
8: बदनाम करती नाले मैं ते कियो दी मिठी चोरी।
7: ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो सीधे अपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार किसी शो मिस ना करो। मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर शाम 7 बजे।

0: खुदा ना करें अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
1: 416-570-0157 What's up everybody, this is Jasmine Sandler, te tusi sun rahe ho Vatnam Dur with Sukhi Nijjar.

0: ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਲਾਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ, ਅੱਜ 2 ਅਕਤੂਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗਲੈਕਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ, 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਲੈਕਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ 7 ਵਜੇ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੂਡ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਟੇਬਲ ਲਵਾਤਾ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਟੇਬਲ 7 ਵਜੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6477973162 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6477973162 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕਟ ਬਚੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖਾਤੀ ਹਨ, ਔਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6477973162 ਤੇ। ਜੀ ਕਿਰਨ ਜੀ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਡਿਲੀਜੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਸਡ ਮੰਥਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਬਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਪੀ ਫਰਾਈਡੇ ਆਪਕੋ ਔਰ ਆਪਕੀ ਟੀਮ ਕੋ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਸੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਂ ਜੋ ਵੋਟਸ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਸੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਸੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਅਬ ਹਮ ਲੋਗ ਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹਮ ਲੋਗ ਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਰਿਨਿਊਵਲ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੋ ਰੇਟਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਟਿਲ ਹਾਇਰ ਰੇਟਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦੈਟ ਐਂਡ ਹਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਦੈਮ?
2: देखिए, मॉर्गेज रिन्यूअल्स के लिए आप जो बात कर रहे हो, मॉर्गेज रिन्यूअल का सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज यही है, जो कंसर्न है, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है होम ओनर को, यही आती है कि रिन्यूअल के टाइम पे अगर उनकी मॉर्गेज पेमेंट इंक्रीज हो जाए तो हाउ दे गोना मैनेज द मंथली पेमेंट।
1: अच्छा,
2: तो सबसे उसके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज यही है, और उसके लिए कपल ऑफ इश्यूज हैं। एक तो अगर आपकी मंथली पेमेंट बढ़ जाए, अगर आपके कुछ इनकम इश्यूज आ गए हैं, आपकी इनकम कम हो गई है, आपके क्रेडिट आपके जो है नीचे हो गया है, और आपको ये फियर होता है कि मेरी मॉर्गेज रिन्यू होगी नहीं होगी, ये भी कंसर्न है, क्योंकि काफी होम ओनर को रिन्यूअल्स लेटर नहीं आ रहे, और इनफैक्ट बैंक इज डिक्लाइनिंग टू रिन्यू based maybe they have missed some mortgage payment, maybe they having some different information in their record. So bahut sare reasons hain renewal ka time pe, but hum abhi wo batayenge ki jiske andar client ko help karegi. Dekhiye, aapka renewal jo hai kisi bhi home owner ka residential renewal ki baat ho rahi hai, 5 se 6 mahine pehle ye activate ho jata hai, matlab आपको ईमेल भी आ जाएगी, आपको मोबाइल ऐप में भी नजर आएगा, आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा किरण जी, बहुत ही बेसिक कंसर्न ये रहता है कि मैं क्या रेट लूं, फिक्स रेट लूं या वेरिएबल रेट लूं, है ना, मेरे लिए क्या बेटर है? देखें, ये आपकी पर्सनल च्वाइस है, फिक्स रेट भी आपकी पर्सनल च्वाइस है। अगर आपको घर नहीं बेचना 2-3 साल में, आप फिक्स रेट लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 6 महीने 1 साल में जब और अच्छे घरों की प्राइस हो जाएगी बेचेंगे, तो वेरिएबल रेट लें, क्योंकि वेरिएबल की पेनल्टी कम पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात है कि वेरिएबल का रेट अभी कम है, राइट, फिक्स का रेट थोड़ा ज्यादा है। देखें, सिचुएशन प्राइम रेट कल 7% भी हो जाए, बट फिक्स रेट एक दफा लॉक करवा लिया, वो चेंज नहीं होगा, वो आपके उसके अपने बेनिफिट्स है। अभी इस वक्त फिक्स जो है वो 4.19 से लेके 4.59% है, 3-5 ईयर फिक्स्ड, है ना। वेरिएबल रेट वो कम है, 3.49 से लेके 3.79 के दरमियान है, 3-5 ईयर। और काफी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइम रेट इंक्रीज हो सकता है ये वाले अनाउंसमेंट में, October 28, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, October 28 इज अ डेट, तो इज अ बैंक ऑफ कैनेडा गोइंग टू अनाउंस। तो मैसेज यही है कि अपनी तैयारी 3-4 महीने पहले करें रिन्यूअल्स की, राइट किरण जी, और इसके अलावा आप शॉप अराउंड भी करें, और आपके देखिए मल्टीपल डेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड डेट्स हैं, सेकंड मॉर्गेज हैं, तो रिन्यूअल के टाइम पे अपने बैंक से बात करें कि आप उसको भी पे करना चाहते हैं, मगर आपको लग रहा है कि बैंक नहीं हेल्प कर रहा है या आपके कुछ इनकम इश्यूज हैं, क्रेडिट इश्यूज हैं, मेरी तरह किसी भी प्रोफेशनल को रीच आउट करें। आई एम हियर टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन जो आपके हक में बेटर है, जो आपके जिससे आपको सेविंग होनी चाहिए महीने की $2,000-3,000 की। अगर आपके देखिए रिन्यूअल एक अपॉर्चुनिटी है सेविंग करने का, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मिसेस सागर में होता हूँ मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 6 PM, सैटरडे को ओनली लिमिटेड टाइम। सो दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन। नंबर टू कॉल मी 6475127000, 6475127000।
1: बिल्कुल मुकेश जी, एक सवाल मेरा और है, वो हम क्विकली जो है कवर कर लेते हैं। अच्छा, अगर जो है होम ओनर्स को जो है बैंक ने ऑफर भेजा क्योंकि रिन्यूअल आ रहा है ना, सो इंटरेस्ट रेट हाई है, स्टिल हमें स्विच करके देखना चाहिए, शॉप अराउंड करना चाहिए कि जस्ट सिंपली हमें वो साइन कर देना चाहिए कि जो है ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है?
2: देखें, ट्रांसफर के दो रीजन हो सकते हैं ट्रांसफर करने के। अगर आपका मॉर्गेज लिए हुए आपको 15 साल पहले ली थी, 10 साल पहले ली थी, तो आप उनको रीफाइनेंसिंग करके उसकी एमोर्टाइजेशन इंक्रीज कर सकते हैं। जब एमोर्टाइज आप जैसे दोबारा 30 साल की करोगे तो महीने की किश्त आपकी $1,000-2,000 कम हो सकती है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, काफी लोगों को नॉलेज नहीं है, काफी लोग ये समझते हैं, काफी लोगों का मन में ही होता है कि रिन्यूअल का टाइम पे दोबारा बैंक इनकम डॉक्यूमेंट मांग लेगी या आपको है ना डॉक्यूमेंट बैंक आपकी इन्फॉर्मेशन, अगर बैंक को कोई डाउट होगा तो मांगेगी, अदरवाइज नहीं मांगेगी, 99% पर नहीं मांगती है। दूसरे केस के अंदर यह है कि अगर आपको स्विच करना तभी फायदा है जब आपको अगर उसकी मंथली पेमेंट बहुत ज्यादा पड़ रही है, जैसे एग्जांपल है आपकी TD बैंक या RBC बैंक के साथ है, आप वो चाहते हो मॉर्गेज आपकी जो है बहुत ज्यादा है, आप चाह रहे हो कम हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको रीफाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, एमोर्टाइजेशन कम बढ़ानी पड़ेगी, मंथली पेमेंट आपकी शॉर्ट हो जाएगी। और हाँ, और साथ साथ ये कि आपके मल्टीपल डेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड डेट्स पे करने हैं, घर में एक्विटी है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स बिल दो दो तीन तीन साल से नहीं पे किया, तो रीफाइनेंस के थ्रू ये सारे आप पे कर सकते हैं। तो वंस अगेन, दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन। इसके अलावा अगर आपको पास आपकी मॉर्गेज 2028 या 2030 में रिन्यूअल है, आपको अलग से फाइनेंसिंग चाहिए, आपको इमीडिएट फंड चाहिए, ठीक है, कैश इन हैंड चाहिए 2-3 दिन में 4 दिन में, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। घर में एक्विटी होनी चाहिए, घर की वैल्यू चेक करवानी है, आप मुझे अपना घर का एड्रेस और नाम बता सकते हैं, मैं चेक करके बताऊंगा आपको। और मुझसे मिलना है तो मैं मिसेस सागा में हूँ मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे फॉर लिमिटेड आवर्स। दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन। नंबर टू कॉल मी 6475127000, 6475127000। किरण जी, नेक्स्ट टाइम हम कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग में कुछ बात आप कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग में जिनको अपना अपना घर हाउस बिल्ड करना है, जो कस्टम हाउस बनाना है, उसके लिए फाइनेंसिंग लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, अगर तो उसमें आपको कोई डिस्कस करनी है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कल बात हो सकती है 6475127000, 6475127000। मुकेश जी के नाल जी गलबात कर सकते हैं, और बिल्कुल जी वीकेंड है, तुसी सारे वीकेंड नू करना होने जो है, ते आपां मिलांगे सोमवार जांदे जांदे एक बारी फिर। तुसी हरसिमरन सिंह जी नू इलेक्ट कर सकदे वार्ड 9-10 तो, जिहड़े कि रीजनल काउंसलर दे लई खड़े ने, ते ब्रैम्पटन सिटी काउंसलर वार्ड 9-10 तो बलजिंदर सिंह नहल, तुसी इन्हां नू इलेक्ट कर सकदे आ। ते फिर हुण गलबात करदे आ वार्ड 7-8 दे विच, तुसी राकेश शर्मा जी नू जिहड़ा है जी इलेक्ट कर सकदे आ अपना जिहड़ा जी सिटी काउंसलर दे वखों। सो बिल्कुल जी, साडे सारे स्पॉन्सर्स दा, साडे सारे लिसनर्स दा बहुत बहुत शुक्रिया है जी, जिन्हां दे सहयोग नाल असीं एक वधिया जिहड़ा जी पॉजिटिविटी वाला रेडियो प्रोग्राम तुहाडे तांई पेश कर पाउंदे आ। कोई गलती होई होवे ते बिल्कुल जी तुसीं जिहड़ा है जी माफ जरूर कर देना। और एक वारी फिर जिहड़ा जी मैं मैसेज दे दवां कि जे तुहानूं जी ट्रकिंग सैक्टर दे विच जॉब चाहीदी हैगी आ, ते एक फर्म है जिन्हां नूं ड्राइवर्स दी लोड हैगी आ, तुसीं इस नंबर ते गलबात कर लैणी 6473028017 ते। और मोना मैंगी जी ने अज दे प्रोग्राम नूं वी स्पॉन्सर कीता सी, इंश्योरेंस संबंधी कोई भी गलबात करनी होवे ते तुसीं मोना जी दे नाल वी गलबात कर सकदे आ 416-509-1509 ते। सो शुक्रिया, थैंक यू एंड सत श्री अकाल, मिलदे हां जी हुण सोमवार नूं।

चक्कर लगाओ। मॉर्गेज ब्रोकर रोहल गरेवाल का ऐलान की तहाड़ी मॉर्गेज पहला बी लेंडर ना हुई हुई है यानी कि प्राइवेट हुई हुई है बद तो बद तुम मॉर्गेज पे कर रहे हो तो तहाड़ी मॉर्गेज हुण वो ए लेंडर ना यानी बैंक ना करवा देंगे तो तहाड़ी जिहड़ी मॉर्गेज है वो सस्ती हो जाएगी। इस तो अलावा तुहानू सैकंड मॉर्गेज चाहिए है जां फिर तुहानू जल्दी जल्दी 30,000 तो लैके 5,00,000 चाहिए बहुत कागजा की लोड़ नहीं फटाफट तुहानू मिल जाएगा। होम लाइन क्रेडिट बनानी है जां फिर कमर्शियल या कंस्ट्रक्शन लोन चाहिए तो अज ही करो कॉल रोहल गरेवाल 6476425 11 6476402511 ते कॉल करो। मॉर्गेज ब्रोकर रोहल गरेवाल।

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: सेंट्रल मिसिसागा दे रहन वाले हो, ए मौका ना गवाओ। बैलीमोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने। कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने। सीमित समय ले HST दे विच खास बचत दा फायदा लो। हाईवे 401, 407 अते 410 गो ट्रांजिट शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटा दी दूरी ते। सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होने दा मौका ना गवाओ। आज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com, BALLYMORE homes.com।